अरे आंटे इनका टेवा का के मम चाहू अरे जहोफा इनका टे क्यों छोटी दे के बनी है सब पर आकाई भी सुन गए ना ना के तो दिया हाउ भी सुन गए आके तो मैं क्या बोलूँ MMR से बोलो क्या बोलूँ मिस्टर से बोलो क्या बोलूँ मिसिस से बोलो इनकी I don't know.